0: क्या ये कहते हैं कि उसने इसको अज खुद बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम खुदा के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है।
1: قل ما

0: और उनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला उन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा रखी है और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं।
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

0: जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहल वयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए खुदा से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर खुदा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे वाकिफ है।
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

0: और आसमानों और जमीन की बादशाही खुदा ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है।
1: सयकूलुल मुखल्लफून इज़ा इन्तलक़तुम इला मगानिम लितख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिउकुम।

0: जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो खुदा तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा।
1: लैसा अलल अमा हरजु वला अलल अरज हरजु वला अलल मरीज हरज वमन

उनसे कहो, क्या तुम खुदा को अपनी दीनदारी जतलाते हो? और खुदा तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और खुदा हर शय को जानता है।

0: और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई।
1: तबसिरतन वज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब,
0: ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें।

तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि ऐ है, एक तो बुढ़िया और दूसरे बांझ।

0: उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिबे हिकमत और खबरदार है।
1: सौदा

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: 102.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। जी सर, सवालात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। सर, अगर हम एआई का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल देखें तो हमें एआई बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे कि एलेक्सा और सीरी नजर आते हैं, तो सर इनके भी कोई प्राइवेसी कंसर्न्स हैं इनको यूज करने के?
2: देखिए, आजकल एआई बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा है, सीरी है और गूगल असिस्टेंट और कॉर्टाना जो है, ये हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये स्मार्ट असिस्टेंट्स हमारी वॉइस कमांड सुनकर हमारी मदद करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न जो है वो उठते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि कंटीन्यूअस लिसनिंग और डाटा कलेक्शन। देखें, इस चीज़ ने हमारी आवाज़ सुननी है और फिर हमें रिस्पॉन्स करना है, जिसका मतलब है कि ये कॉन्टीन्यूसली हमें सुन रहे हैं और जो कमांड हम इन्हें दे रहे हैं ये उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो डाटा जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, वो हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर रहे हैं जिनको वो सुन रहे हैं, और वो उन रिकॉर्डिंग्स को अपने पास सेव कर रहे हैं और वो सेव होके क्लाउड के ऊपर जा रही हैं।
1: सर, ये एक्टिविटी हम मोबाइल बंद करके रखें तब भी हो रही होती है या बस ड्यूरिंग यूज ही हो रहा होता है?
2: आपका सेलफोन अगर बंद है ना तो भी वो आपको सुन सकता है। तो देखिए, कंटीन्यूअस लिसनिंग, उसके बाद अब होता ये है कि जो डाटा है ये क्लाउड के ऊपर जा रहा है, जहाँ पे कंपनीज वाले, मुख्तलिफ कंपनीज वाले उस चीज़ को सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि भी यूज़र किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, और फिर उन्हीं इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो यूज़र को उसके प्रेफरेंस या उसकी प्रेफर्ड चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ का जिक्र किया, आपने कोई चीज़ बोली है और थोड़ी देर बाद आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी खोल दें तो आपको उसके रेलिवेंट ऐड आना शुरू हो जाते हैं।
1: जी सर, ये तो आम रूटीन में यही सब हो रहा होता है। अभी कोई एक गाड़ी देख लें तो गाड़ियों के एड्स आने लग जाएंगे हमारे सामने। शॉपिंग के कोई पेज खोल लें या शॉपिंग के बारे में कोई बात कर लें तो वही आइटम्स हमारे सामने रिपीटेडली आती जाएंगी।
2: जी बिल्कुल, ये हमारे असिस्टेंट ही हैं जो हमें सुन रहे हैं, ठीक है, कान लगाए बैठे हैं हमें सुनने के लिए। इसी तरह फिर ऐसा होता है कि अब जाहिर सी बात है, जब डाटा आपका क्लाउड के ऊपर स्टोर हो रहा है, खुदा ना खास्ता कोई हैकर वहाँ पे बैठा है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले, और अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के बाद आपके डाटा को मिसयूज कर ले या वॉइस स्पूफिंग कर ले कि आपकी आवाज़ की कॉपी करके कोई मैसेज जनरेट कर दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ स्टेटमेंट दे दी जाए जिसकी बेस पे आपको जो है वो नुकसान हो, क्योंकि वो तो एआई नहीं तो वॉइस जनरेट कर देनी है, लेकिन आपको फिर मतलब उस अपने आप को साबित करने में टाइम लगेगा। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो बेहतरीन तरीके का ये है कि हम अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर लें, जिस तरह वेक वर्ड सेटिंग्स आती हैं असिस्टेंट्स में आती हैं, उनको कस्टमाइज कर लें कि भाई जब हम बोलेंगे, यानी कि जब हम कोई बटन या की ऐसी प्रेस करेंगे तो ही हमारा असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं।
1: जी सर।
2: जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर भी जो है वो आपका असिस्टेंट जो है वो इंटीग्रेट है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप थर्ड पार्टी को जब इंस्टॉल करें एप्लीकेशन को तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें बाकायदा, क्योंकि अलाउ आप खुद कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपको बोलता है अलाउ एक्सेस टू मीडिया ऑडियो, हम नहीं देखते इस चीज़ को, हम डायरेक्ट क्या करते हैं अलाउ कर देते हैं।
1: जी सर।
2: तो आप अपनी यानी कि उसको खुद ही इजाजत दे रहे हैं, तो

0: इस चीज़ को मतलब गौर से देखें, सिर्फ जो आपकी ट्रस्टेड आपकी एप्लीकेशंस हैं उन्हीं के ऊपर आप फोकस करें, और पासवर्ड्स में आप अपना जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर अप्लाई करें कि अगर कोई आपका पासवर्ड मिसयूज़ करना चाह रहा है तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है वो आपको बता दे कि आपके नंबर के ऊपर या आपके ईमेल के ऊपर या मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट कोड भेज दे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई चाह रहा है आपके सिस्टम को यूज़ करना, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह जो वो आप यूज़ करें।
1: सर ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वॉइस रिकॉर्डिंग्स, तो सर ये इसको हम इलीगल एक्टिविटी में लेके आएंगे या ये लीगल ही कहेंगे इसे, क्योंकि आपने कहा कि जब हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आती है कि अलाउ हम खुद करते हैं, तो इनडायरेक्टली तो ये एक लीगल एक्टिविटी हुई, तो इस तरह आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
0: जी देखें, बिल्कुल लीगल एक्टिविटी उस लिहाज से क्योंकि हमने खुद ही कंसेंट मतलब साइन किया, हमने खुद ही उन्हें इजाज़त दी है कि भाई ठीक है। लेकिन अब आजकल जो है ना वो इस चीज़ के रेलिवेंट एक बहुत ज़्यादा ये कंसर्न जो है वो उठा है, ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में दो बेसिकली लॉज हैं, एक HIPAA लॉ है और एक GDPR लॉ है, जो ये कहते हैं कि भाई डाटा जो है वो यूज़र की परमिशन के बगैर आगे नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि वो जब आपको कंसेंट देते हैं तो आप उसके मुताबिक वो सिर्फ आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी मुकम्मल हिस्ट्री को नहीं। इसमें जो रिसर्च एरिया डोमेन है वो फेडरेटेड लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि मेन कंसर्न ही उसका प्राइवेसी के रेलेवेंट है कि जितने भी प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी, यानी कि क्योंकि मशीन लर्निंग है, AI है, और AI को ट्रेनिंग के लिए डाटा चाहिए।
1: जी सर।
0: अब अगर हम डाटा ही नहीं देंगे तो AI कैसे काम करेगी? तो AI ने जो है वो आपके डाटा के ही ऊपर काम करना है, तो फिर सिर्फ उतना पार्ट कि जिसमें आपकी जो है प्राइवेसी जो है वो यानी कि महफूज रहे, वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है इस पर।
1: सर जैसा कि पहले हम AI का रोल साइबर सिक्योरिटी में डिस्कस कर चुके हैं, और कोई शक नहीं कि AI साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बना रही है, मगर क्या हैकर्स भी AI को इस्तेमाल कर सकते हैं इन अटैक्स के लिए या कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
0: कर सकते हैं नहीं बल्कि कर रहे हैं, हैकर्स जो हैं वो AI को बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है हैकर्स की दुनिया में कि लेट AI हैक्स फॉर यू, तो हैकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अटैक कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं AI को। अच्छा, जिस तरह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ट्रेडिशनल फिशिंग अटैक है, ट्रेडिशनल फिशिंग अटैक में क्या होता है कि यूज़र जो है वो खुद ही स्क्रिप्ट बना के खुद ही टाइप करके लोगों को मैसेज जनरेट कर रहा है, लेकिन उसी के बरक्स अगर कोई हैकर जो है वो AI की मदद से, ChatGPT की मदद से कोई मतलब बना लेता है स्क्रिप्ट वगैरह और उसको बड़े प्रोफेशनल वे में लोगों को सेंड कर रहा है, जिस तरह डीप फेक टेक्नोलॉजीज आई हैं, फॉर एग्जांपल कोई जनाब मेरा फेस यूज़ करके कोई भी मैसेज जनरेट कर दे, भाई लोग तो यही समझेंगे कि यार ठीक है, एक ऑथेंटिक पर्सन है, इसकी तरफ से मैसेज है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं या हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, जबकि वो फिशिंग अटैक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ट्रेडिशनल जो फिशिंग अटैक है उससे 3 गुना ज़्यादा AI ड्रिवन जो फिशिंग अटैक है वो सक्सेसफुल रहे हैं। इसी तरह रैंसमवेयर अटैक्स आ जाते हैं, रैंसमवेयर का मतलब भत्ताखोरी, कि जनाब आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और आपसे डिमांड की जाती है कि भाई हमें इतने आप जो हैं वो पैसे भी नहीं बल्कि बिटकॉइन में मांगते हैं वो लोग कि हमें इतने बिटकॉइन जो है वो आप दे देंगे तो हम आपके सिस्टम को अनलॉक कर देंगे। अब AI बेस्ड जो है वो एक रैंसमवेयर अटैक जनरेट किया जाता है जिसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं, आम रैंसमवेयर को तो डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन AI बेस्ड जो है रैंसमवेयर, इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर, और ये पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर इतना यानी कि शरारती किस्म का अटैक है कि ये क्या करता है कि आप यानी कि हर 5 से 10 मिनट के बाद जो अपनी कोडिंग को चेंज कर लेता है, जो वो अपनी कोडिंग को चेंज कर लेता है उसके मेथड्स नए डिफाइंड हो जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास जो अटैकर्स हैं फिर ये क्या करते हैं कि जनाब आपकी जो मेलवेयर है इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर देते, इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि जो आपका एल्गोरिथम है वो खुद ही ये समझता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है ये इसको डिटेक्ट करने की, जरूरत नहीं, ये चीज़ ठीक है। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आजकल सामने देखने में आ रही हैं, तो अटैकर्स जो हैं वो बिल्कुल AI को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: सर अभी आपने बात की डीप फेक टेक्नोलॉजी की, तो सर आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि फेक पिक्चर्स और फेक वीडियोस लोगों के सामने आ जाती हैं, इस तरह के स्कैंडल बहुत कॉमन है, तो सर इनको क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वाकई ही कुछ खुद से बनाई गई है या ओरिजिनल है, को डिफरेंशिएट किया जा सकता है इसमें कि नहीं?
0: देखिए बिल्कुल किया जा सकता है, डीप फेक टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हुई हैं, और इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इंसान को टेक्नोलॉजी से

0: है वो चाहते हैं कि उनका मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए, और वो चाह रहे हैं कि उनकी ये परेशानी है। जब स्टूडेंट इतनी लंबी स्टेटमेंट देखेगा तो वो घबरा जाएगा,
1: ऐसे
0: तो ये क्या मेरे सामने आ गया। लेकिन उसमें से एक्चुअल चीज़, मैंने वही बोला डेटा लिटरेसी, कि डेटा में से एक्चुअल मीनिंग को निकालना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस करके एक्चुअल मीनिंग को निकाल के, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को निकाल के, तो फिर उसको प्रोसेस करना। सॉल्यूशन दोनों का सेम है, लेकिन फ़र्क स्टेटमेंट का फ़र्क आ गया। इसी तरह से फिर आपको चाहिए कि आप जो है वो आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स बताऊं कि AI को यूज़ करना है तो कैसे करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबली कैसे AI को यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ है वो गलत है, ये सही है, और उसके बाद जो है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उस स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि AI जो है वो लीडरशिप स्किल्स नहीं रखती। AI से काम लेना आपका काम है, आपका राइटअप ऐसा हो, आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डोमेन एक इस्तेमाल होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वर्ड यूज़ होता है कि भाई एक आप ऐसा प्रॉम्प्ट लिखें कि AI जो है वो आपको रिजल्ट्स दे, आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको दे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, और मतलब एक टर्म यूज़ होती है AI एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन, कि इंसान प्लस AI मिलकर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: इससे वही बात आपकी मैं यहाँ पे दोबारा कहूँगा कि AI जॉब्स ख़त्म नहीं कर रही, AI नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रही है।
1: सर सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का टाइम एक लिमिटेड टाइम होता है और ख़त्म होने जा रहा है, तो आज का एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब AI कोई गलती करती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है आपके ख्याल में?
0: देखें, AI गलती करती, सारी सी बात है, मशीन है, गलती कर सकती है, 100% एक्यूरेट नहीं है। तो अभी तक जो AI एथिकल कंसर्न्स है, ये जो एरिया है, ये अभी स्टिल इट्स अ ग्रे एरिया, इसमें भी काम हो रहा है कि भाई अगर AI गलती कर देती है या AI सिस्टम के थ्रू कोई गलती हो जाती है तो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखें, तीन तरह की मतलब चीज़ें हैं इसमें। नंबर वन, के इंजीनियर या डेवलपर जिसने AI मॉडल को डेवलप किया, जिसने AI मॉडल क्रिएट किया, अगर तो वो मॉडल गलती कर देता है तो फिर असूलन ज़िम्मेदार वो इंजीनियर या वो डेवलपर होगा, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई अपना AI के सिस्टम को मतलब मुतारिफ करवाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, उसने कोई अपना सिस्टम बनाया है जो फ्रॉडिनेंट एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है, समटाइम्स वो मतलब कोई मिस्टेक कर देता है, वो नहीं डिटेक्ट कर पाता उस चीज़ को, तो उसका नतीजा क्या होगा कि भाई लोगों का पैसा या लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो तो सारी ज़ाया हो जाएगी, जिसके नतीजे में लोग रिस्पॉन्सिबल किसको कहेंगे, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो सिस्टम को डेवलप किया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कहेगी भाई हमने तो उससे डेवलप करवाया था सिस्टम, वो डेवलपर के ऊपर गलती डाल देगी।
1: जी
0: अच्छा, तीसरी चीज़ होती है एंड यूज़र। फॉर एग्जाम्पल वही जनाब एक टूल आया हुआ हमारे पास, वही डीप फेक टेक्नोलॉजी वाली बात। अब अगर मेरे ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, मैं उसका इस्तेमाल चाहूँ तो नेगेटिव करूँ।
1: जी
0: तो जब मैं उसका इस्तेमाल नेगेटिव करूँगा, मैं कोई ऐसा यानी कि वीडियो क्रिएट कर देता हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो कि नुकसान का बायस बनती है या अगले के लिए ख़तरनाक है, तो उससे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा क्योंकि उसका इस्तेमाल मैंने किया है। AI तो एक टेक्नोलॉजी है, AI एक तो टूल है जिसको मैं यूज़ करके अपना काम कर रहा हूँ, तो एंड यूज़र विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 2018 में जिस तरह उबर ने एक काम किया था, उबर एक सेल्फ ड्राइविंग कार थी, उसका जो है वो उसने एक पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट नहीं किया, क्लासिफाई नहीं कर सकी, वो उसने उसको हिट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। तो अब जनाब जाहिर सी बात है लीगल एक्शन मतलब उबर के ऊपर लिया गया, जब मतलब ट्रायल्स चले तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि भाई AI जो थी ना इसमें शामिल थी, और जो ड्राइवर था उसका भी नहीं पता था, सेल्फ ड्राइविंग कार थी जाहिर सी बात है, तो वो फिर सेटलमेंट करके केस जो है उसको क्लोज कर दिया गया था। तो अभी स्टिल जो है वो एरिया अंडर एक्सप्लोर है कि भाई कौन यानी कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह अमेजोन में एक सिस्टम मतलब उन्होंने एक ऐसा मुतारिफ करवाया, हायरिंग सिस्टम था,
1: जी सर,
0: उसने क्या किया कि सिर्फ यानी कि फीमेल का जो डाटा था उसको मतलब साइड पे कर दिया, सिर्फ मेल डाटा को जो है वो उसने सेलेक्ट किया। तो उसके बाद जब ये चीज़ सामने आई तो फिर उस मॉडल को स्क्रैप किया गया था। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसने मतलब AI एक्ट जो है वो मुतारिफ करवाया कि जिसमें AI का ह्यूमन राइट्स और प्राइवेसी कंसर्न के हवाले से जो है वो काम चल रहा है, तो इस एरिया के ऊपर अभी मजीद काम जारी है।
1: बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सामीन, आज के प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि AI के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6, live station of the nation.

0: FM 92.6.
1: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
2: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, सोचूं तो एक शख्स ना अपना दिखाई दे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं,

ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
0: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.